0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे सौरव मायती। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम के समापन अंश में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नमिता भट्टाचार्य का गाया ये श्यामा संगीत। तो आइए सुनते हैं ये श्यामा संगीत, कलाकार नमिता भट्टाचार्य।
1: You were listening to Shyama Sangeet. Our artist was Saurav Maiti. Concluding the program, we now present Shyama Sangeet. Our artist is Namita Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी नमिता भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत।
1: यू वर लिस्निंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज नमिता भट्टाचार्य। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

जगदोलग्य पुनीता श्री सुधींद्र कर सरोज संजाता जगदोलग्य पुनीता दाशरथि यदा सत्ववता हुईसी दुर्मत गण जयसी ही समीर मत संस्थापक राजी निंद करनु नीगी भूसुरुग संसेव सदा चरणी कंगोलिसुव करुणी राघवेंद्र गुरुरायर जीविचिरो सौख्य जीविचिरो राघवेंद्र गुरु

श्रीद विठ्ठलन सन्निधान पाता संस्तुति तुव माता श्रीद विठ्ठलन सन्निधान पाता संस्तुति तुव माता मोद बड़ि सुति हतानिह परदल्ली ईत गेसरियल्ली मोद बड़ि सुति हतानिह परदल्ली ईतन गेसरियल्ली मोद बड़ि सुति हतानिह परदल्ली।

Ma

Mama,

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर ख्याल गायन. कलाकार हैं जैनुल अबेदिन. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रसन्न रुद्रा और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रतन नट्टा. तो लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर ख्याल गायन. कलाकार हैं जैनुल अबेदिन.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल्स. लिसन फर्स्ट टू अ ख्याल इन द राग बागेश्वरी. आवर आर्टिस्ट इज जैनुल अबेदिन. Accompanying him on the tabla is Prasanna Rudra and on the harmonium is Ratan Notto. Listen now to Khayal in the Rag Bageshri. Our artist, Jainul Abedin.

0: अभी आप राग बागेश्वरी पर जैनुल अबेदीन से ख्याल गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रसन्न रुद्रा और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रतन नट्टा। कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है राग झिंझोटी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं जैनुल अबेदीन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रसन्न रुद्रा और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रतन नट्टा। तो लीजिए प्रस्तुत है राग झिंझोटी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं जैनुल अबेदीन।
1: You were listening to a khayal in the rag Bageshri. Our artist was Jainul Abedin. Accompanying him on the tabla was Prasanna Rudra and on the harmonium was Ratan Notto. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, our artist Jainul Abedin now presents a khayal in the rag Chinchoti. Accompanying him on the tabla is Prasanna Rudra and on the harmonium is Ratan Notto. Listen now to Khayal in the Rag Chinchoti, our artist Jainul Abedin.

0: अभी आप राग झिंझुटी पर ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे जैनुल अवेदिन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रसन्न रुद्रा और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रतन नट्टा। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग झिंझोटी। आवर आर्टिस्ट वाज जैनुल अबेदीन। Accompanying him on the tabla was Prasanna Rudra and on the harmonium was Ratan Notto. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर आज के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं मोहन कुमार दरेकर का शास्त्रीय गायन। प्रारंभ में मोहन कुमार दरेकर का गाया राग मियां की तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है तज देव प्राण घड़ी घड़ी आवत मो मन में। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है लंगर का करिया जीन मारो। आइए सुनते हैं मोहन कुमार दरेकर का गाया राग मियां की तोड़ी। तबले पर साथ कर रहे हैं अरविंद कुमार आजाद, हारमोनियम पर श्रीराम हसबनीस।

अभी अपने मोहन कुमार दरेकर का गाया राग मियां की तोड़ी सुना। तबले पर साथ की थी अरविंद कुमार आजाद ने, हारमोनियम पर श्रीराम हसबनीस। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं मोहन कुमार दरेकर का गाया राग जय जयवंती। विलंबित ख्याल एक ताल में निभत है, बोल है कहां कलवाही परेरी। द्रुत ख्याल तीन ताल में निभत है, बोल है ऐसो नवल लाडकी राधा। तबले पर साथ कर रहे हैं अरविंद कुमार आजाद, हारमोनियम पर श्रीराम हसबनीस।

अभी अपने मोहन कुमार दरेकर का गाया राग जय जयवंती सुना। तबले पर साथ की थी अरविंद कुमार आजाद ने, हारमोनियम पर श्रीराम हसबनीस। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की निर्मिति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Meet Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन. पहले प्रस्तुत है राग तिलंग में उमरी. बोल हैं सांवरे सलोने मोरे श्याम. तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खाने.
2: This is a Ragam channel of All India Radio. In the program of Light Music, we now present a vocal rendition by Ustad Lakshman Das Sindhu. First, listen to Thumri in Rag Tilang. The words are Saanvre Salone More Sham is accompanied by Hashmat Ali Khan on tabla.

0: अभी आप सुन रहे थे राग तिलंग में ठुमरी, और अब पेश है मुल्तानी काफी, बोल हैं वाह वे सजन।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग तिलंग एंड नाउ लिसन टू मुल्तानी काफी। द वर्ड्स आर वाह वे सजन।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु काया राग मुल्तानी काफी अभी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए मिश्र काफी ठुमरी, बोल हैं नाही पड़े मोसे चै। तबले पर आपकी संगति की है हर्ष अली खान ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मुल्तानी काफी। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी। द वर्ड्स आर नाही पड़े मोसे चन, अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद लक्ष्मणदास सिंधु का गाया राग मिश्र काफी में ठुमरी, और अब सुनिए सूफियाना कलाम। रचना बाबा बुल्ले शाह की है, बोल हैं की जाना मैं कौन।
1: यू आर लिसनिंग ठुमरी इन राग मिश्र काफी एंड नाउ लिसन टू सूफियाना कलाम। इट्स कंपोज्ड बाय बाबा बुल्ले शाह। द वर्ड्स आर की जाना मैं कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे ये सूफियाना कलाम, और लीजिए अब प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी। बोल हैं सैया बोलो मोसे तनक।
1: यू आर लिसनिंग टू सूफियाना कलाम। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। द वर्ड्स आर सैया बोलो मोसे तनक।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी सुन रहे थे, और अब सुनिए दादरा बोल हैं मैंने लाखों के बोल सहे।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू एंड नाउ लिसन टू दादरा। द वर्ड्स आर मैंने लाखों के बोल सहे।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया ये दादरा भी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए मिश्र तिलंग में ठुमरी, बोल हैं अब के सावन घर आजा।
1: यू वर लिसनिंग टू दादरा एंड नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग। द वर्ड्स आर अब के सावन घर आजा।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र तिलंग में ठुमरी अभी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए दादरा, बोल है दिल की ये नजर का निशाना हुआ।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। नाउ लिसन टू दादरा, द वर्ड्स आर दिल की ये नजर का निशाना हुआ।

0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: इन द प्रोग्राम ऑफ लाइट म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित लक्ष्मण दास सिंधु। ही वाज अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

श्री कौरव वत्सल राममोहन राव कंक्लूड्स वयोलिन रिसाइटल विद राम राम इन सिंधु भैरवी रागम सेट्टु आदितालम प्रयाग रंगदासु कीर्तना कार्यक्रम चवरिका राम राम सिंधु भैरवी रागम आदितालम प्रयाग रंगदासु कीर्तना

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं त्र्यंबकराव जानोरीकर का गायन। आपने प्रस्तुत किया है राग बैरागी भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, ख्याल के बोल है अब कर्म कीजे। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है सुरस सुरस साधले। आपको सारंगी पर संगति कर रहे हैं मधुकर खाडिलकर और तबले पर संगति कर रहे हैं सूर्यकांत गोखले। आइए सुनते हैं त्र्यंबकराव जानोरीकर का गाया हुआ राग बैरागी भैरव।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे त्र्यंबकराव जानोरीकर का गायन, राग था बैरागी भैरव। आपको सारंगी पर संगति कर रहे थे मधुकर खाडिलकर और तबले पर संगति कर रहे थे सूर्यकांत गोखले। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं मास्टर कृष्णराव का गायन, राग तोड़ी। विलंबित ख्याल 3 ताल में निबद्ध है। ख्याल के बोल है बाजो रे मोहम्मद सा। द्रुत ख्याल 3 ताल में निबद्ध है। ख्याल के बोल है बरसत रस तौर मांगत हूँ। आपको सारंगी पर साथ कर रहे हैं मधुकर खाडिलकर और तबले पर है चंद्रकांत कामत। सुनते हैं राग तोड़ी, कलाकार मास्टर कृष्णराव।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मास्टर कृष्णराव का गाया हुआ राग तोड़ी। आपको सारंगी पर संगति कर रहे थे मधुकर खाडिलकर और तबले पर संगति कर रहे थे चंद्रकांत कामत। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग माल कौंस पर सितार वादन सुनवाएंगे. कलाकार हैं सौभिक लाहिड़ी. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार. तो लीजिए प्रस्तुत है राग माल कौंस पर सितार वादन. कलाकार हैं सौभिक लाहिड़ी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक. This evening we present Hindustani instrumental recital followed by Hindustani vocal recital. Listen first to a sitar recital in the rag Mal Kaus. Our artist is Shobhik Lahiri. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar. Listen now to the sitar in the rag Mal Kaus. Our artist Shobhik Lahiri.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए सबसे पहले प्रस्तुत है मिस्र तिलक कमोद ठुमरी, तदुपरांत मिस्र पीलू ठुमरी। कलाकार हैं पापिया सेन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अशोक राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है मिस्र तिलक कमोद ठुमरी, तदुपरांत मिस्र पीलू ठुमरी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आप सर्वप्रथम मिश्र तिलक कमोद ठुमरी, तदुपरांत मिश्र पीलू ठुमरी, उसके उपरांत मिश्र पहाड़ी दादर सुन रहे थे। कलाकार थी पापिया सेन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अशोक राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to मिश्र तिलक कामोद ठुमरि followed by मिश्र पीलू ठुमरि and मिश्र पहाड़ी दादरा। Our artist was Papia Sen. Accompanying her on the tabla was Ashok Roy Chaudhuri and on the harmonium was Devashish Odhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार है सुरेंद्र शंकर अवस्थी. राग है सावनी नट. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है सब मिल गाओ. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं आज सब मिल मंगल गाओ. संगत कलाकार हैं तबले पर स्माइल दद्दू खां, सारंगी पर समत खां. दिस इज राग 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यू आर सिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यह है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे सुरेंद्र शंकर अवस्थी से राग छाया नट। एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल के बोल हैं आज बधावा गाओ। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं झनन झनन झन झनन बाजे बिछुआ। कंटिन्यूइंग द वोकल साइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी यू विल लिसन राग छाया नट।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थे सुरेंद्र शंकर अवस्थी, संगत कलाकार थे तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समत खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव का बांसुरी वादन. सर्वप्रथम आप सुनेंगे इन्हीं की बजाय बांसुरी पर राग गुर्जरी तोड़ी में धुन. मध्य लय रूपक तथा द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित रविनाथ मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई राग गुर्जरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। आइए सुनते हैं उन्हीं का बांसुरी पर बजाया राग मेघ।

अभी आप सुन रहे थे पंडरी मोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाया राग मेघ। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव अपने कार्यक्रम का समापन बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी से कर रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: दिस इज रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी. ही इज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय रफीउद्दीन साबरी. प्रतीक चौधरी फर्स्ट फ्रेंड्स राग गुर्जरी तोड़ी.

0: अभी आप सुनिए प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग उजरी तोड़ी। प्रतीक चौधरी कंक्लूड्स सितार रिसाइटल विद राग शुद्ध सारंग।

0: अभी आप प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

नाम श्रवण सुखम यमुना कल्याणी रागम आदि तालम तुलसी वनम कृति लास्ट आइटम ऑफ दिस कंसर्ट इज नाम श्रवण सुखम इन रागा यमुना कल्याणी सेट टू आदि ताला कंपोज्ड बाय तुलसी वनम।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संत तुलसीदास की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुद कुलकर्णी ने।

संत ज्ञानेश्वर की भक्ति रचना अभी आपने सुनी वैभवी शेट के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई की भक्ति रचना ऋषिकेश बोड़स के स्वर में।

संत मीराबाई की रचना ऋषिकेश बोड़स के स्वर में अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं सुमन मते के स्वर में संत चनाबाई की यह रचना।

यदि संत जनाबाई की रचना जिसे गाया था सुमन मते ने। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए गजानन वाटवे के स्वर में बाभ बोरकर की ये रचना।